0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: फिर वीप वार्चा वो शार्या वेती वुचिन वुपेन दायतुन फिर वेलुमनाय चम निबुआना ते तो मुन्तां दंग मी वार्चों वो शार्तुन वार्चों जोक चु वुपेन दायाएं दस्मांग में सिंग शाकी दफ्तियावन उफ़ाज़कना नाय जान मतुंग अंग्राई शकराज़ निसांगे के नंग तो बीली आम गराब दावोलियाब कने संजय जान दाते नंबी शेफे नंग फेन नाय अंगत लंग नाय शक्ति या इजाज़ जाने तो तुम वाज जान तो बीली तन नरीव हम फार्च अब दावोल नाय अंगालं तुम कचनाय तूल Da voteza mi bukanjang lang areten da shishem naikiangi angat lang naizan kriza shishem tukran jerai kiai.
2: Das mas me velanga
1: kada dangan naitun zani dam tarang nareu tun jafaz kanam bunep dawol ngangi ab nang kominam naitun distrika ziskam bunep dawol ngangi bay suzu vena laem jai aba mizali aitun teram zali dam fafatesha nang shishem naitun kiai da shala masarang vatanga nai unshanga naizan mang mizada unfropai ngan mama muze naem kiang fropainga chatia da dima pukuza mang fropainga dam zazan da shan dmain ang fropainga da niaka chokung fropainga zada tel nzak ang fropainga da si vovid naiko zan jeng fropainga nga raika zan de fas vovid nai da yebe zan zan chak da da tena majen jiranga sa izabe uaza me faranai rashanga chia mbulam tuitui tiki ah da war rashanga chak me faranai tuni na ufak misa zaga da zan taranga nai abuko
0: shota tumpkula shota tumpkvav.